उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे या बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो

0: बड़े मियाँ, इन लकड़ियों की क्या कीमत है?
1: इनकी कीमत हम मियाँ बीवी का एक वक्त का खाना।
0: तो लो, ये तुम्हारे दोनों मियाँ बीवी के लिए काफी है, मंजूर है ना?
1: जी हाँ।
0: आओ ले आओ।
1: चलिए।

उजाला रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन उजाला उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो डीएबी प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे। और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

एक बार एक सेठ जी को व्यापार में बहुत घाटा पड़ जाता है। वो उदास रहने लगते हैं। धर्म पत्नी कहती है कि स्वामी, ऐसे चिंता करने से कुछ नहीं होगा। मेरा कहना मानो और आप भोले भंडारी की कांवड़ लाकर पावन गंगा का जल उन पर चढ़ाओ और हमारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सेठ जी अपनी धर्म पत्नी की बात मानकर पैदल चलकर नीलकंठ महादेव के दर्शन करते हैं और हरिद्वार से बम बम की जयकार लगाते हैं। कांवड़ लेकर शिव का नाम जपते हुए महादेव पर जल चढ़ाते हैं तो भोले बाबा उनको दर्शन देकर उनके सभी कार्य सिद्ध कर देते हैं। तो आइए सुनते हैं ये भजन।

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 5 दिन

0: live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 59 फ्रागे फॉर

उजाला रेडियो देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए

संसार रूपी चक्की की ओर। इस चक्की के भी दो पार्ट हैं, धरती और आकाश। दिन रात यह चक्की चलती रहती है।

रहीम कहते हैं, किसी बड़े आदमी से मित्रता हो जाए तो अपने छोटे मित्र का तिरस्कार न कीजिए, उसको भूलिए नहीं।

रहीम के अनुसार प्रेम एक कच्चे धागे के जैसा होता है, बड़ा संभालना पड़ता है। देखिए क्या सुंदरता से वर्णन किया है।

सभी जानते हैं रहीम कृष्ण भक्त थे। उनके स्वभाव के बारे में एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रहीम स्वभाव से बड़े महान दानी थे। बहुत से दानी हुए हैं, रहीम जैसा दानी नहीं हुआ, क्योंकि विशेषता थी। रोज सुबह घर के बाहर बैठ जाते थे दान करने के लिए, भावना के साथ मुट्ठी भर भर के दान करते थे। कोई भी उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जा सकता था। लेकिन एक विशेषता थी, दान करने के लिए जैसे जैसे वो अपने हाथ उठाते थे तो अपनी आंखें नीचे झुका लेते थे। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था, ये रहीम कैसा दान करते हैं, दान भी करते हैं और इन्हें शर्म भी आती है दान करने में, निगाहें झुका लेते हैं। इस बात की चर्चा हुई, गोस्वामी तुलसीदास जी तक बात पहुंची। उन्होंने सुना, मन ही मन मुस्कुराए और दो पंक्तियां लिखकर रहीम के पास भेजी।

रहीम ने पढ़ा, समझ गए गोस्वामी तुलसीदास जी तो अंतर्यामी हैं, उन्हें क्या नहीं मालूम, शायद मुझसे कहलाना चाहते हैं। दो पंक्तियां उन्होंने भी नीचे लिख दी,

पूरा तोर दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, के कर साथ तू ओतो में घूमे है, और के कर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

उजाला रेडियो पर हम एक नगमा आपको सुनाने को जा रहे हैं. ये गाना हम या सोम्स हैप्पी फन दाग तो कि कोनो कोनो गाना रहेगा जो तुम अंगे रोज सुने और कभी कभी तो मुड़िया में आ जाएगा. एंड वो ही गनवा हैगा कि आजा आजा बदमाश मोहम्मद रफी एंड आशा भोसले आपको सुनाने को जा रहे हैं फिल्म का नाम तीसरी मंजिल. आजा आजा तू है प्यार मेरा. You are Ujala Radio Bird. Tu chahe jahan par baate. Aap sabhi ko ek shubh shaam, een hele fijne middag.

Iguanwa, het nou mooi hega, ik heb tot nu toe geen enkele band gehoord. Ik kom band, of het nou van Suriname is of van Nederland, ki Iguanwa ze hun guys hega. Geen enkel band. Ik kom band. In ieder geval na Kiego opname benij was hun. En YouTube in Daliba. Nee, dat niet. Misschien spelen ze wel, maar ik heb dat nog niet op YouTube kunnen vinden. जला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम आपको ये नहमा सुनने को जा रहे हैं लव इन टोक्यो पेश किया जा रहा है उजाला रेडियो पर सुनने वाला और ये ना ना ना ना ना ये गाना नहीं लेकिन ये

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और इस बार हम आपको ये नगमा सुनाने को जा रहे हैं दिलबर की आंखों का नगमा आप सुनने को जा रहे हैं। एंड फिल्म का नाम तम्मा

कोलिग्याना कोलिग्याना भी आपने सुने हैं उजाला रेडियो पर। एंड न्यू वही गाना रूप दीरानी ऑफ उजाला रेडियो।

रूप दी रानी भी आपने सुने हैं उजाला रेडियो पर पेश किया गया है। सुन वालों, और इस बार हम आपको ये नामा सुनाने को जा रहे हैं, नो मर्सी का किसी से मुझे प्यार है, अनमिक्स नो मर्सी। तुफालख इवेंट वा हॉलैंड में है गाइस, नो मर्सी। किसी से मुझे प्यार हो एंड गाने वाले हैं रैंडी बैताली, प्रवेश एंड विनेश के साथ।

किसी से मुझे प्यार मिक्स अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो पर पेश किया गया है सुनवाला और यहाँ तक हमने प्रोग्राम को पेश किए हैं। हम यही आशा करें कि आपको जरूर से पसंद आया हुआ होगा यहाँ तक जो प्रोग्राम हमने पेश किए हैं आपके लिए। Ik wens jullie allemaal een hele fijne middag. Mooi rijden en buiten gaan hangen, maar we zullen

0: देश भर में सुनाई देते हैं, तू बता दे सबको इसे बताते हैं। ओ तो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो, और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।
1: दिल को छू जाने वाले गाने सिर्फ उजाला रेडियो पर।

0: उजाला रेडियो पर सुनिए यादगार गीत।
1: हाय प्रीतम बसे पहाड़ परी कि मैं जब ना

मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा लड़ी पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश Voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

हे सुन वालों, मैं हूं आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

संजय सावंत से आप गीत को सुने कि थोड़ा प्यार चाहिए। उजाला रेडियो है ये। हर एक को शुभ दिन, शुभ रात्रि पेश है हम सब की तरफ से।

फिल्म का नाम मैं तेरा हीरो एंड स्टेशन है द लुक्स्ट एंड गजलस्ट ओ जला रेडियो

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने।

आर उजाला रेडियो का पैगाम आप सुन रहे हैं। मैं हूं शहीद गुलजार, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। एक घंटे तक आपके खिदमत में हम हाजिर है लेकर कुछ मिले जुले संगीत। लीजिए सुमन कल्याणपुर और रफी साहब की आवाज़, तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी।

सुमन कल्याणपुर, मोहम्मद रफी साहब की आवाज आप अभी सुने हैं फर्ज नामक फिल्म से। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत ना मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। युवाओं के श्रोताओं के मनोरंजन के वास्ते कुछ मिक्स मार्क सॉन्ग्स पेश किए जा रहे हैं। ऐसे में हो जाए ये सिलेक्शन, हमको तो यारा तेरी यारी जान से भी प्यारी है।

द मैन विद द एवरग्रीन वॉइस किशोर कुमार और द मैन विद द क्वीन ऑफ इंडिया आशा जी की आवाज में आप अभी सिलेक्शन सुने हैं, हमको तो यारा तेरी यारी जान से भी प्यारी। लारा लप्पा, हाय हाय क्या बात है।

सच्चे के तुमसे मिलके मुझे ऐसा लगा। सुरेश भटकर और वैसे आशा जी नहीं लेकिन साधना सरगम की आवाज। तुमसे मिलके मुझे ऐसा लगा। अब कैसा लगा आपने अभी इस सेक्शन में सुने हैं उजाला रेडियो यूआर के जरिए। क्या प्रेम कहानी है

मिले जुले संगीत में हम आपको एक और ओल्डी सुनाने वाले हैं, कह सकते हो गोल्डन ओल्डी है। ये सिलेक्शन राजकुमारी की आवाज में है, फिल्म महल का सिलेक्शन। घबरा के जो हम सर को टकराए तो फिर अच्छा है, कुछ इस तरह से सिलेक्शन है राजकुमारी की आवाज में।

घबरा के जो हम सर को टकराए, टकराए तो अच्छा हो। फिल्म महल, ये पुराना महल का फिल्म, फिल्म महल का सिलेक्शन आपने भी सुने हैं, राजकुमारी जी की आवाज। क्या देखते हो सूरत तुम्हारी, क्या चाहत हो चाहत तुम्हारी। लीजिए एक और रोमानी सिलेक्शन आपकी खिदमत में अर्ज है। क्या देखते हो सूरत तुम्हारी।

0: मेलोडी द क्वीन ऑफ इंडिया आशा भोसले और सुरो कबाचा मोहम्मद रफी साहब की आवाज। क्या देखते हो सूरत तुम्हारी, क्या चाहते हो बस क्या बताऊं चाहत तुम्हारी। इट्स द रॉकिंग सेंसेशन, यू आर उजाला रेडियो का पैगाम। हर एक को एक शुभ दिन, मुबारक दिन अर्ज है स्टूडियो से। विजय फिल्म का नाम मुझसे शादी करोगी, लाल दुपट्टा।
1: लाल दुपट्टा,
0: वेरी नाइस सॉन्ग।

रेडियो के क्षेत्र पर हर काम काज के वास्ते आज नहीं तो कल के लिए आप फोन का नंबर लिख लेना 0204090807 020409908070।

The Rocking Sensation Ujala Radio, you are kapayham. दुनिया में क्या बताएं, दुनिया में लोगों को हमेशा धोखा हो जाता है।

0: हेलो, कौन है? हेलो
1: हेलो हेलो
0: यस,
1: कौन है?
0: मैं हूँ।
1: हेलो
0: हेलो, नाजिया हसन की आवाज, टेलीफोन प्यार। मैं तो स्मार्टफोन प्यार।

हाँ जी 3-3-2-2-4-4 मुझको हो गया तुझसे प्यार, तेरी आवाज सुनूं मैं बार बार, मुझको हो गया टेलीफोन प्यार। नाजिया हसन की आवाज। The rocking sensation you are, Ujala Radio का पैगाम आप सुन रहे हैं। मिले जुले संगीत आपकी खिदमत में अर्ज है। और ऐसे में हो जाए फिल्म का नाम मीरा का मोहन।

केसों की शिकन है अभी शबनमी, शिकन जो करवटें सलवटें वो पड़ जाती हैं, जैसे कि ये सलवटें अब पड़ गई हैं, तो गेसुओं में जो सलवटें पड़ी हैं अभी भी शबनम की तरह है, चमक रही है। रात में शबनम चमकती है।

हुस्न और इश्क की आज मेराज है, द हाइट ऑफ ब्यूटी एंड द हाइट ऑफ इश्क, मोहब्बत, लव।

की आवाज में सुंदर गजल को आप सुने उजाला रेडियो पर, और आप सुन रहे हैं गीत और गजल की दुनिया।

होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। फिल्म प्रेम गीत से आप सुने जगजीत सिंह की आवाज में, और उजाला रेडियो है ये। गीत और गजल की दुनिया को का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, और हम आपको ये राय पहले भी दे चुके हैं कि और मज़ा आप लेना चाहें इस प्रोग्राम से तो ऐसा कीजिए, घर के चिराग जो है तो कम कीजिए, रेडियो की आवाज़ जोर कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, फिर देखिए मज़ा क्या है इस प्रोग्राम के साथ।

और शामी गजल आप अभी सुने मुकेश जी की आवाज में, उजाला रेडियो है ये प्रोग्राम है गीत और गजल की दुनिया।

अब तकरीबन 10 मिनट के बाद इस प्रोग्राम को हम समाप्त करेंगे गीत और गज़ल की दुनिया। लेकिन आपको याद रहे कि प्रोग्राम फिर आने वाले हफ्ता आप सुन सकेंगे और हम यहीं पर आपका इंतज़ार करेंगे, आप भी ज़रूर आना सुनने के लिए।

ये उजाला रेडियो है सुनने वालों, और इसी चुन के साथ आरंभ किया जा रहा है प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया। साप्ताहिक प्रोग्राम है उजाला रेडियो पर जो आप सुनते हैं, जिस प्रोग्राम में गीतों और गजलें हम आपको सुनाते हैं, बातें कम करते हैं ताकि इत्मीनान से आप इस प्रोग्राम को सुने और लुफ्त उठा सके। तो चलिए पहला फनकार की तरफ हम चलते हैं आज का प्रोग्राम में, और वो होंगे अनूप जलोटा जी।

चांद अंगड़ाइयां ले रहा है। कोशिश कर रहा हूं आपको कुछ इस तरह सुनाऊं कि आप महसूस करें कि इस खूबसूरत हॉल के अंदर चांद अंगड़ाइयां ले रहा है। गौर कीजिएगा।

है अनूप जलोटा जी की एक लाइव रिकॉर्डिंग आप प्रोग्राम में सुने। और अब हिस्सा लेंगे अब चंदन दास जी।

लेके कहीं और ना जाया जाए, चंदन दास की आवाज में आप सुने उजाला रेडियो पर, और प्रोग्राम का नाम गीत और गजल की दुनिया।

जिस दिन से चला हूं कभी मुड़ कर नहीं देखा। जगजीत सिंह की आवाज में आप गजल को सुनिए।

आना कहकर पुकारो, सभी मुझे इस नाम से जानती है। अन्नू राधा पाउडवल और भूपिंदर, इन दोनों की आवाजों में आप सुने प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया जारी है।

खुदा से मुकाबला करना या खुदा को बुरा भला कहना कि शिर्क है ये बात, शिर्क उसका कि इश्क को इतना ना बढ़ा

यूं ना मिल मुझसे खफा हो जैसे, साथ चल मौज हो सब जैसे। आप सुने जगजीत, ना मेहदी हसन की आवाज में आप सुने जगजीत सिंह। अब हिस्सा लेंगे दोबारा प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया में।

जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी तो कांटों का हार मिला। जगजीत सिंह की आवाज में आप सुनिए। सुनने वालों, उजाला रेडियो है, ये प्रोग्राम का नाम है गीत और गजल की दुनिया। और आज का इस प्रोग्राम में अब एक आखिरी गजल पेश है, चंदन दास की आवाज में होंगे।

0: रोजी, रोजी पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया
1: क्या?
0: ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
2: वो होने से क्या होता है?
0: जब मुझे हुआ था तो मुझे नींद नहीं आती थी।
2: मुझे भी नहीं आती।
0: मुझे भूख नहीं लगती थी।
2: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती।
0: दिल में दर्द होता था।
2: दर्द तो मुझे भी रहता है।
0: बस यानी कि तू गई काम से।
2: क्या?
0: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है और इस रोग की बस एक ही दवा है।
2: वो क्या?
0: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा।
2: मारिया!
0: रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
3: क्या हुआ यो यो?
0: देखो ना क्या हो गया है अपनी रोजी को।
3: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
0: नहीं नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
3: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा।
0: नहीं!
3: देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
1: बाय गॉड, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
3: तो यो, तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल तुझे कष्ट क्या है।
4: मुझे दर्द रहता है। दिल में दर्द रहता है।
5: अच्छा?
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
5: बाप रे!
4: सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, जाने क्या हुआ मुझको, कोई दे दवा मुझको।

0: ताली ताक धमी ताक ताली ताक धमी ताक धाला आंगो ताक धुगी ताक ताजी के नंद ताक नाक ताक झुमी ताक नाक नाक झुमी ताक नाक नाक झुमी ताक नाक नाक झम तारी ता झग तारी ता झन जाने को कुदारी ताक तारी के नंद झम तारी ता झग तारी ता झन जाने को कुदारी ताक तारी के नंद झम तारी झग तारी ताक नाक ताक ताज झन्ने ताज झुमी ताज झन्ने ताज झम तारी झग तारी जाने जाने को ताज झन्ने ताज झुमी ताज झन्ने ताक ताक धंग कर धम कर धंग कर धम ताक धंग कर धम
1: पाखा नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

हटूंगा वही हिला को रख डालूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह मेरी मदद कर अल्लाह, मैं कुट्टी को छोड़ूंगा नहीं मैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह।